पौड़ी साहिब हो दयाल कृपा करे तां साईकार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म बनाए सी हुक्म मने होवे प्रवान ता खसमे का महल पाए सी खसमे पावे सो करे मनो चंदिया सो।

0: से यार आप करो करिया हम कैसे हो करी पुकार नानक न जिन किया फिर तिस ही
1: करनी सार।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद चक्र चिहन अर बरन जात अर पात नहन जिह रूप रंग अर रेख पीख को कह न सकत किह अचल मूरत अनभउ प्रकाश।

साहि साहाण गणिज त्रिपवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहत त्वसर्वनाम कथय कवन करम नाम बरनत सुमत खेल गुड़ौ कियौ हर राय संतोख समाचरौ बिमल बुद्ध सतगुर समाणौ आजोनी संभवयौ सुजस कल कवियन वखाणयौ गुर नानक अंगद वरयौ गुर अंगद अमर निदान गुर रामदास अर्जुन वरयौ पारस परस परमाण अगम अनंत अपार गुर अवगत अलख अपीव पार ब्रह्म पूरन ब्रह्म सतगुर नानक देव सतगुर नानक देव देव देवी सब त्यावह नाद बाद बिस्माद राग रागन गुण गावह राग नाद नाद बाद बिस्माद राग रागन गुण गावह सहज समाद अगाद साध संगत सपरंपर अवगत अलख अपीव अगम अगमित अपरंपर जारत कर मुलतान दी फिर करतारपुरे नौ आया चढ़े सवाई देह दिही कलयुग नानक नाम ते आया विण नावै होर मंगना सिर दुखां दे दुख सबाया मारिया सिक्का जगतर विच नानक निर्मल पंथ चलाया थापिया लहणा जीव दे गुर आई सिर शतर फिराया ज्योति ज्योत मिलाए कै सतगुर नानक रूप वटाया लख न कोई सकई आचरज आचरज दिखाया काया पलट
स्वरूप बनाया। लख न कोई सकई आचरज आचरज दिखाया।

अहनिस सहज सुभाय दर्शन परसिया गुरु कै जन्म मरण दुख जाय होवे सिफत खसम दी नूर अरसह कुर सहाओ चटिया तुद डिठे सच्चे पात साह माल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पात साहु सिर साहां दैसाहु जिस पास बैठिया सोही है साबना दा वेसाहु सज्जन सच्चा पात साहु सिर साहां दैसाहु जिस पास बैठिया सोही है साबना दा वेसाहु सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी।

काट काट रमैया जाते, से सज्जन संत से सुखिए, ठाकुर अपने पाने कह नानक जिन हारे प्रभ डिठा, तिन कै साध कुर्बाने सलोक देह अंधारी अंध सुन्नी नाम विहूणिया नानक सफल जनम जय काटे वुठा सच तनी शांत

0: तेरा घर पला, तेरा घर आनंद वधाई, तुद कर मान महता, तेज अपना आप जर,
1: सर्ब कला भरपूर दिसै जत कथा, नानक दासन दास तुदे आगे बिनवता, सलो पवन गुरु पाणी पिता, माता तरत महत, दिवस रात दुए दाई दाया, खेलै सगल जगत।

ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना, सार न जाना तेरी अब ते वड़ा सतगुर नानक जिमे कल राखी मेरी। ऐसे दीन दयाल सतगुरु पहले पातशाह धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने आज दे दिन श्री करतारपुर साहिब जी विखे ज्योति जोत समाए। इन्हां सतगुरां दा ज्योति जोत समाउण दा गुरपुरब बेअंत संगतां सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी विखे बड़ी श्रद्धा अते भावना नाल मना रहियां हन। जथा शक्त पेतावां अर्पण कर रहियां हन। सतगुरु जीओ सर्वत साध संगत अपने दरों करो, सिखी सिद्धत प्रभुसा नाम दर बख्शना, शुभ भावनावां पूरियां करनियां, यात्रावां सफला करनियां, हे निवाणियां दे मान, हे तानियां दे तान, हे ओटियां दी ओट, तन तन श्री गुरु रामदास साहिब जीओ, तन तन सतगुरो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दे हाजूर शब्द चौंकी आनंद साहिब जी की अरदास। भुल चुक माफ करनी सच्चे पातशाह जीओ आप जी दे हाजूर कड़ा प्रसाद दी देव हाजर है, दर परवान होवे परवान होवे प्रसाद। संगत विच वरतौण दी आग्या बख्शो, सुख होवे नाम चिते आवे।

0: हो पैगंबर के ते गाने न परत ते भूमि ही ते हो कबीर भूमि ही मिला है
1: भूमि ही ते हो कबीर भूमि ही मिला है
0: जैसे एक आग ते कन्नू का कोटे आग उठा
1: यारे नारे हो कबीर आग में।

0: छत्र ही की छाया कई कौशलों चलाता है।
1: बड़े बड़े राजन को दावत भी रहता है,
0: बड़े बड़े राजन को द्रप को डालता है।
1: मान से महीप और दलीप कैसे
0: शत्रुधारी,
1: बड़ो अभिमान भोज दंड को करता है।
0: दारा से दलीसर
1: दुर्योधन से मान तारी,
0: दारा से दलीसर।

नानक ते मुख उजले केती छुटी ना। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

दुख दारु सुख रोग भया जा सुखताम न होए तो करता करना मैं नाही जा होकर न होए बलह।

वेदान ताकौ करपाहन अनुमानत महामूढ़ कछ भेद न जानत महादेव कौ कहत सदा सेव निरंकार का चिन्हत नह पेव आपे अपनी बुद्ध है जेती बरनत भिन्न भिन्न तुह तेती तुमरा लखा न जाए पसारा केह विद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कहीं भूपा अंडज जे रज से तज कीनी युत पुज खान बाहुर रच दीनी कहूं भूल राजा हुए बैठा कहूं सिमट पयो संकर कठा सगरी सृष्ट दिखाए अचम भाव आद जुगाद स्वरूप सुजम भाव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख वार असिख संघरो दुष्ट जते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस तुज तब सरनी परे तिनके दुष्ट दुखित हवै मरे पुरख जबन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार तय है ताके काल निकट न आए है रक्षा हुए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो ताके ताप तनक मह हर हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाह श्वय सके न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फांसते ताहे उबारा जिन नार

दलहो उबारी सर्वठार मोहो हो सहाय दुष्ट दुख तेले हो बचाई खड़ग के तमै शरण तिहारी आप हाथ दले हो उबारी सर्व ठार मोह हो सहाई दुष्ट दुख तेले हो बचाई सवैया पाई गहे जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं आन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहें मत एक न मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सब बहुपेद कहें हम एक न जान्यो श्री आसपान कृपा तुमरी कर मैं न कहियो

दास गोविंद दास तुहार राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन बजियां वधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईयां शब्द ता गावहु हरि केरा मन जिनी वसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारणा अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारणा सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यो मन हो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नाही करते रहे कर ता तेरा सब किछ है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहेब क्या नाही करते रहे साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईया कर सांत सुख मन आए वस्या जिन इच्छा सब पुजाईया सदा कुर्बान कीता गुरु विटह जिस दिया एह वड़ियाईया कहे नानक सुनहो संत हो शब्द धरहो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित कर सभागै कर सभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक को मारिया तुर करम पाया तुद जिन काओ से नाम हर कै लागे कहे नानक तहे सुख हुआ तित कर अनहद वाजे।

पार ब्रह्म प्रभ पाया पुत्रे सगल विसूर दुख रोग संताप उतरे सुनी सची बाणी संत साजन पाए सरसे पूरे गुरत जानी सुनते पुनीत कहते पवित सत गुर रहे आपार पूरे विनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते पुनीत कहते पवित सत गुर रहे आपार पूरे बेनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे मुंधावणी महला पंजवा थाल विच तिन वस्तु पइयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबसे आधारो जे को खावे जे को पुंचै तिसका होए उधारो एह वस्त तजी नह जाई नित नित रख उरे तारो

0: तरस पयोई तरस पया मेहरा मत होई सत गुर सज्जन मिले आ नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थीवै हरे आ तरस पया मेहरा मत होई सत गुर सज्जन मिले आ नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थीवै हरे आ वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।
1: बोलो जी वाहे गुरु। एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती समर कै गुरु नानक लई ते आए फिर अंगद गुर ते अमरदास राम दास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नो सिमराओ श्री हर राय श्री हर

दान बबेक दान विसाह दान भरूसा दान दाना सिरदान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जोगी अटल।

गोरपुर की शरणाई तिस है प्रापत जिस तुर लिखिया सोई पूरन पाई नानक की बेनंती प्रभ जी नाम रहा लेवलाई तिस हे प्रापत जिस तुर लिखिया सोई पूरन पाई नानक की बेनंती प्रभ जी नाम रहा लेवलाई वाहे गुरु जी का खालसा।

हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिख खाई। माया मोह परम पै पूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखहु सरणाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखहु सरणाई। सुकहु टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसम दी, नूर अरसह कुरसह चटिया। तुद डिठे सच्चे पाते सा, माल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पाते साहु, सिर साहु। जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दावे साहु। सज्जन सच्चा पाते साहु, सिर साहु। जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दावे साहु। सत नाम श्री वाहिगुरू

सत जना मिल हर जस गाए, कोट जन्म के दुख गवायो, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो, सर्ब सुख हर नाम वडाई,

0: संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो, सर्व सुख हर नाम बढ़ाई, गुर प्रसाद नानक मत पाई।
1: श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता तत् महत देव सदा।

0: पहला सच तेरे खंड सच ब्रह्मांड सच तेरे लो सच आकार सच तेरे करण सर्व विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुदया खैला करोड़ सच्चा सब तान सच्चा सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्ची पातशाह नानक सच ध्यान सच जो मर जमै सो कच न कच महला पहला
1: वडी वड्याई जा वडा नाओ वडी वड्याई जा सच न्याओ वडी वड्याई जा ने चल थाओ वडी वड्याई जाने आलाओ वडी वड्याई बुझे सब पाओ वडी वड्याई जा पुछना दात वडी वड्याई

0: पड़ पड़ गड्डी लदी है, पड़ पड़ भरी है साथ, पड़ पड़ बेड़ी पाई है, पड़ पड़ गड्डी है खार, पड़िए जेते बरस बरस, पड़िए जेते वास, पड़िए जेती यार जा, पड़िए जेते सास। नानक लेखा एक गल होर हूं मैं चखना चाख महला पहला।
1: लिख लिख पढ़िया तेता कड़िया, बहुत तीर्थ पवया ते तो लव्या, बहु पेकिया देही दुख दिया।

शरण गोविंद गात पाई, तै लोभ क्रोध तृष्णा तजी, समत जल जानी जुगत, गुर अमरदास।

मिले सच नाम करतार सो दृढ़ नानक संगरे हो ताते अंगर लहना प्रगट तास चरने लिबरे हो तित कुल गुर अमरदास आसा निवास तास गुण कवन वखानो जो गुण लख गम तिने गुण अंत ना जानो बोए थो बदाते निर्मयो सब संगत कुल उदर।

0: प्रणायण कलातार जग में परवरयो निरंकार आकार ज्योत जग मंडल करयो जह कहते भरपूर शब्द दीपक दीपायो जह सिखे संग्रयो तत हर चरण मिलायो नानक कुल निमल अवतरयो अंगद लैने संग हो गुरु अमरदास तारन तरन जन्म जन्म पासरण तो
1: चित चितवो अरदास कहो पर कह पी ना सको सर्ब चिंत तुझ पास साथ संगत हो तको तेरे हुकम पवे निशान तो करो साहिब की सेवा जब गुर देखे सब जिस्ट नाम करता मुख मेवा अगम अलख कारण पुरख जो फुरमावे सो कहो गुर अमरदास कारण करण जिव तू रख तिव रहो पहर समाध सुनह ज्ञान है आसन चढ़ो धर्म तनख कर गयो भगत सीला सर लड़ो पै निरपोहर टल मन शब्द गुर ने जा गड्यो काम क्रोध लोभ मोहपत पंच दूत बिखंड्यो भलो पुहार ते जो तना निरपत नाथ नानक बर गुर अमरदास सच सल पन तै दल जितो एव युद्ध कर घन हर बूंद बसो रो मावल कुसुम बसंत गणंत नयावै रव सस किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावै रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर कै कबजन पल

ही अमृत छाट बिखे बिख खाई माया मोह परम पे पूले सुत दारा से प्रीतल एक उत्तम पंथ।

0: दास राखो सरनाई, एक अरदास पाट कीरत की, गोरे रामदास राखो सरनाई।
1: सो कहो टल गुर सेविया, अहनस सहज सुपाए, दर्शन परसिया गुरु के, जन्म मरण दुख होए सिफत खसम दी, नूर अरसह गुरसह। तुध डिठे सच्चे पातशाह, अमल जन्म जन्म दी, सजन सचा पातशाह, सिर सहांद जिस पास बैठिया, सोही सबना दावे, सजन सचा पातशाह, सिर सहांद जिस पास बैठिया, सोही सबना दावे साहो। सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी, सोरठ महला पांजवा, घर पहला ते तुके एक ओंकार, सतगुर प्रसाद किस जाची किस आराधे, जा सब को कीता होसे, जो जो दीसा वड़ा बड़ेरा, सो सो खाको रल से, निरपा निरंकार पाव खंडना, सब सुख नव निद देसे, किस जाची किस आराधे, जा सब को कीता होसे, जो जो दीसा वड़ा वडेरा, सो सो खाको रल से, निरपा निरंकार पाव खंडना, सब सुख नव निद देसे, हर जियो तेरे दाते राजा, मानस बपड़ा क्या साला है, क्या तिसका मोहताजा, रहा जिन हार त्याया, सब कुछ तिसका, तिसकी

निखुट ना कभी जाए। आनंद भया सुख सहज समाने, सात गुर मेल मिलाई। मन नाम जप नाम आराध, आनंदन नाम बखानी। उपदेश सुन साध संतन का, सब चूकी कान जमानी। जिनका कृपाल हुआ प्रभ मेरा, से लागे गुर की बाणी। कीमत कौन करे प्रभ तेरी, तू सर्ब जिया दयाला। सब किश कीता तेरा वरत, क्या हम बाल गोपाला। राख ले नानक जन तुमरा,